0: yek bidu ba ba sera pira mar un din bezari wa kai samu ma gaera moile tore bhayo ke bhani aapno dukh pukara na lai bini le bhanti bhai sabani
1: bachi khau bhana radhana gayo thullo lalai bhayo tupayukta hudai usukra pitama koi nadi ma paro koi brahmana koi sarapa parada juate kahana make माथि भइकन सरल तहाँ गए खेलिरहेका थिए
0: घर हो प्रहाल घर हो दाहकी छोरी म धेरै वर्ष महापति मरि गए मेरो विपद के कहूँ विवाह गरी दिए बुढा कुरुपी कना मेरै वर्षमा

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: टरीकोट दोलाखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।